आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निजाम वजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुताल्लिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को $200 अरब तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्कसाली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है, जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों और निगरानी के निजाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ। और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में यशवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता। श्री शंकर मुरली ने लॉन्ग जंप, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर की दौड़ और ईशा सिंह ने निशानेबाजी में चांदी के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में परहार सीटी पॉलिसी और हिकमत अमली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये कॉन्फ्रेंस परहार के 7 कलीदी सतूनों पर गौर खौस करेगी, जिनमें रोकथाम, जवाबी रद्दअमल, दाखिली सलाहियत में इजाफा, इंसानी हकूक, दहशतगर्दी के हालात में कमी, समाज के हमागीर नजरिए के तहत बैल अक्वामी कोशिशों से हमाहंगी, बाजियाबी और मुजाहमत शामिल हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने दहशतगर्दी की सभी शक्लों और मजाहिर को हरगिज बर्दाश्त न करने का नुक्ता नजर अपनाया है। उन्होंने वाजे किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने साल 2019 से साल 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से भारत से भागे हुए 288 मुजरिमीन को मुल्क वापस लाया है। जनाब शाह ने कहा कि एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की बदौलत हथियारों, धमाका खेज मवाद और मुनशियात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलविस शहजाद भट्टी नेटवर्क के 40 मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया गया। वहीं 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई और 15 रियासतों से 350 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए किए जा रहे इकदाम का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने फ्रेमवर्क के हर सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी के खुदकार जवाबी रद्दअमल को इदारा जाती शक्ल देने की वकालत की। जनाब शाह ने हवालगी से मुतालिक नए पोर्टल का भी आगाज किया, जो बैरून ममालिक से मफरूर मुलजमीन को वापस लाने की कोशिशों को तेज करेगा और उन्हें मुताबकत पैदा करेगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात मकामी करेंसियों में तजारत की अदायगियों से मुताल्लिक इकदामात के बरवक्त निफाज पर राजी हो गए हैं। इनमें अदाय

0: और मैचिंग सिस्टम को मजबूत करना और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसियां शामिल हैं। आज मुंबई में सरमायाकारी पर भारत मुत्तहदा इमारात आला सतही मुश्तरका टास्क फोर्स की 14वीं मीटिंग के दौरान दोनों फरीक इस माहदे पर पहुंचे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और अबूजबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख हामिद बिन जायद अन्नयान ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत की। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने अपने बयान में कहा है कि ये मामलात अहम हैं क्योंकि इनसे दो तरफा तजारत और सरमायाकारी ज्यादा मुअसर काबिल रसाई और पायदार हो सकती है। तवानाई सनत लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत खला खुराक की यकीनी फराहमी ज़रई इख्तिरात और स्टार्टअप इकोसिस्टम वो शोबे हैं जिनमें दो तरफा सरमायाकारी को फरोग दिया जा सकता है। मीटिंग के बाद नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने इस साल अशिया और खिदमात की मजमू बरामदात के हजम को गुज़श्ता साल के 863 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 1 खरब अमरीकी डॉलर करने का निशाना मुकर्रर किया है। जनाब गोयल ने कहा कि जामे इक्तिसादी साझेदारी मुआहदे के तहत भारत और मुत्तहदा इमारात के दरमियान दो तरफा तजारत दुगनी होकर तकरीबन 100 अरब डॉलर अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची है। दोनों ममालिक साल 2032 तक दो तरफा तजारत को 200 अरब अमरीकी डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फूड प्रोसेसिंग और बरामदात में वसीतर इश्तराक से भारतीय किसानों को यकीनी तौर पर बाजार मिलेंगे, साथ ही नौजवानों और MSMEs के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि भारत और मुत्तहदा इमारात तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जखायर LNG और LPG सप्लाई और जेर समंदर मुमकिना गैस पाइपलाइन के मैदान में ताउन के इम्कान तलाश कर रहे हैं। बहरी शोबे में जदीद बंदरगाहों, बहरी जहाज साजी, बहरी जहाजों की मरम्मत और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकजी हुकूमत कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली की सूरतहाल का जायजा लेने के लिए अपनी टीमें रवाना करेगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में रबी मुहिम 2026 से मुतालिक कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास के बाद नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की हुकूमतों ने अपनी रियासतों के बड़े हिस्सों में खुश्क साली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि खुश्क साली की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 3 अक्टूबर को मरकजी टीम कर्नाटक भेजी जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मुश्किल हालात में मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: जनाब चौहान ने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर ये खदशात थे कि अनिनों के असरात से काश्तकारी का रकबा कम हो सकता है और बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ताहम वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क ने खरीफ की फसलों की बुआई के तकरीबन तमाम मुकर्रा अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जनाब चौहान ने मुल्क भर में खादों की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म का यादा किया। उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद मुनासिब मकदार में खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर मौसूफ ने खाद के मुतवाजन इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया ताकि जमीन की जरखेजी को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस मुहिम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि खाद का इस्तेमाल सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मिट्टी की जरखेजी से मुतालिक कार्ड में पेश की गई सिफारिशात के मुताबिक किया जाए और खासतौर पर मिट्टी में मौजूद गजाई अज्जा की कमी को दूर किया जाए। हुकूमत ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल का आगाज किया। ये पोर्टल बीमा पॉलिसी जारी करने से मुतालिक मामलात, दावों, निगरानी और रिपोर्टिंग को आसान बनाते हुए मवेशियों के लिए एक ही जगह मरबूत डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मवेशी परवरी और डेयरी के महकमे की मवेशियों की बीमा स्कीम के तहत बीमा किए गए मवेशियों के लिए ये मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का मकसद मवेशियों की बीमा खिदमात को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर, काबिल रसाई और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाना है। साथ ही मवेशियों के हामिल किसानों और उनकी गुजर बसर की पायदारी को मदद करने की खातिर जोखिम से मुतल तहफ्फुज़ को तकवीत देना है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: पशुधन बीमा पोर्टल मुल्क भर में मवेशियों के बीमा प्रोग्रामों में खिदमात की बेहतर फराहमी में तआवुन करते हुए बेहतर तालमेल, बरवक्त निगरानी और डेटा पर मबनी इंतजाम में मदद करेगा। जनाब सिंह ने कहा कि यह पोर्टल किसानों की गुजर बसर के तहफ्फुज की जानिब अहम कदम है और किसान की आमदनी बढ़ाने, उसके ज़रई असासों और मवेशियों के तहफ्फुज और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए की तकमील करता है। जनाब राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पोर्टल के ज़रिए किसान अब अपनी बीमा दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे, वहीं इस पूरे अमल की डिजिटल निगरानी की जाएगी।
3: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
2: पशुधन बीमा पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 मुकामी जबानों में भी दस्तियाब होगा, जिससे मवेशियों के मालिक किसान उनकी अपनी जबान में मालूमात और खिदमात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि इमदाद बाहमी की वजारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है।
4: भारत के इमदाद बाहमी के शोबे में 8.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सोसाइटियां शामिल हैं, जिनके 32 करोड़ से ज्यादा मेंबरान हैं। ये सोसाइटियां कर्ज, डेयरी, चीनी, माही परवरी, मकानात और मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं और मुल्क के देही इलाकों के तकरीबन 98% हिस्से का अहाता करती हैं। साल 2021 तक इमदाद बाहमी की खातिर अलग से कोई वजारत नहीं थी। इसकी जिम्मेदारी वजारत ज़राअत के पास थी, जो मुख्तलिफ महकमों और रियासतों में तकसीम थी, जबकि बेशतर बुनियादी सोसाइटियां अब भी कागजों पर अपने रिकॉर्ड रखती थीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जुलाई 2021 में इमदाद बाहमी की वजारत की तश्कील अमल में आई। इस वजारत ने मुल्क में अपनी नौईयत का पहला कौमी कोऑपरेटिव डेटाबेस तैयार किया, ताकि मुल्क में मौजूद इमदाद बाहमी के इदारों का दुरुस्त रिकॉर्ड मुरतब किया जा सके। इसके अलावा बैन रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और बुनियादी ज़रई कर्ज सोसाइटीज PACs को कंप्यूटराइज करने के लिए माली मदद फराहम की गई। वजारत ने कोऑपरेटिव बैंकों को फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT के निज़ाम से भी मुंसलिक किया। 2024 में नई दिल्ली में मुनक़िदा आलमी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि का नज़रिया पेश किया और कहा कि ये लाखों गांवों, ख़वातीन और किसानों के लिए खुशहाली की राह हमवार कर रहा है।
5: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
4: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: कल से दिल्ली भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दिगर तालीमी इदारों में नौजवान वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। ये कैंप वोटर फेहरिस्त की खसूसी जामे नजरसानी SIR 2026 के तहत लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने तलबा से अपील की है कि वो इस मौके से फायदा उठाते हुए वोटर फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं और जमहूरी अमल में हिस्सा लें। ये खसूसी कैंप बुध तक जारी रहेंगे। भारत और मंगोलिया के दरमियान आज से बराह रास्त प्रवास शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बातार के दरमियान बाकायदा तौर पर प्रवास का आगाज किया गया। इस सर्विस के शुरू होने से दोनों राजधानी के दरमियान सफर का वक्त कम होकर तकरीबन 5 घंटे हो जाएगा। ये प्रवास मंगोलिया की फजाई कंपनी हुन्नू एयर के जरिए चलाई जा रही है और हर पीर को दस्तयाब रहेगी। इस नए फजाई रास्ते से उन मुसाफिरों के सफर का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाएगा, जो इससे पहले बीजिंग या इंचियोन के जैसे मकामात पर परवाज तब्दील करके सफर करते थे। इस सफर में आमतौर पर 13 से 18 घंटे लगते थे। बुनियादी घरेलू इशारे में आज 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 1,124 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई और वो गुज़श्ता 6 महीनों के सबसे निचले मकाम पर पहुंच गया। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई और वो 22,800 से नीचे बंद हुआ।

0: इस गिरावट के असबाब खाम तेल की कीमत में इजाफा, खित्ते की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल और कमजोर आलमी रुझानात हैं जिनका असर सरमायाकारों के जज्बे पर पड़ा है। जापान में जारी एशियाई खेलों में आज भारत ने मजीद 8 तमगे जीते हैं। इनमें निशानेबाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुरश और मुक्केबाजी शामिल हैं। एथलेटिक्स में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भारत के यशवीर सिंह ने चांदी का और रोहित यादव ने कांसे का तमगा जीता। वहीं मर्दों की लॉन्ग जंप में भारत के श्री शंकर मुरली ने 8 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया। मर्दों की 1500 मीटर की दौड़ में गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निज़ाम वजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुतालिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों और निगरानी के निजाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ। और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, जनता के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी घर का दरवाजा खटखटाती है तो इलाज के खर्चे की चिंता जैसे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बगैर किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन इलाज पा सके। जी हाँ, हमारा देश इसी दिशा में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ सरकारी योजनाएं भर नहीं है बल्कि हर भारतीय नागरिक को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी आसान हो रही हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि आप और आपका परिवार इन सेवाओं का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही देश की असल तरक्की है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हम आपको बता दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले मिलाना मत भूलिए दिल्ली का कोड, यानी 011, और फिर घुमाइए 233-1048 या 23717117 या फिर 23717106 और 233-1444 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपने सवाल दोस्तों हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlert पर भी टैग #AskAIR के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है दोस्तों। और मैं देख रहा हूं कि हमारे एक श्रोता अभी हमसे लाइन पर जुड़ रहे थे और उम्मीद है कि फिर से वो लौटेंगे। बिल्कुल, हमारे श्रोता आ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा

0: किस उम्र के लोगों को किस तरह के इलाज को जो है सुविधा प्राप्त हो सकती है।
1: जी जी नमस्कार।
0: कौन से अस्पतालों में?
1: नमस्कार वाजपेयी जी, ये प्रश्न पूछने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो भी श्रोता हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में समझाने में ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आयुष्मान भारत पीएम जय की योजना की जो लाभ है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को अगर जो पात्र परिवार में होते हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध है। तो जो भी पात्र परिवार है उनके जितने भी सदस्य हों किसी भी उम्र के हों वो इस लाभ का योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके। और अगर आप 70 वर्ष या उसके ऊपर के उम्र के हो तो आप भले किसी भी आय वर्ग पे हो आय वर्ग के हो आपको इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त करने कर सकते हैं, आपको आयुष्मान कार्ड आपका बना सकते हैं। और जहां तक बोले इलाज का सवाल है, आपको जो भी इलाज जो भर्ती होने योग्य है जिसमें आपको एक दिन या उससे अधिक भर्ती होना पड़ेगा जो आईपीडी सेवा कहते हैं उसके अंतर्गत 27 स्पेशलिटी के अंतर्गत 1961 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये सेवा जो है आप पूरे देश भर के अंदर लगभग 39,000 अस्पताल हैं जिसमें सरकारी अस्पताल तो है ही, इसके साथ साथ लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो पंजीकृत हैं इस योजना के तहत, इसमें आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही कैशलेस सेवा है, आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपको ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क मिलेगा, आप जाएं अपना कार्ड दिखाएं पंजीकरण कराएं और जो भी आपकी सेवा है उसमें प्राप्त करें।
2: जी हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में आपसे जानेंगे कि किन लोगों के लिए, ये तो 70 वर्ष में तो कोई आय की सीमा नहीं लागू हुई लेकिन क्या है उसके विषय में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक और हमारे श्रोता हिसार हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर हैं, राजेंद्र जी। कहिए राजेंद्र जी, क्या है आपका सवाल?
3: मुनीष जी को नमस्कार और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
2: नमस्कार
3: विशेष जी, ये जानना था कि जो नया कार्ड बनवाना हो तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होगी और क्या कब कब बनते हैं, ये इसके बारे में जानना था। नमस्कार।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको अगर अपना कार्ड बनाना है तो आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए से या फिर 14555 14 ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पे कॉल करके अपना कार्ड बनाने की जो जानकारी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड जो है बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर जो राशन कार्ड है जिसमें आप इस योजना के तहत जो शामिल है इन परिवारों को पहले से ही लिस्ट करके हरियाणा सरकार ने जो अपलोड किया है हमारे पोर्टल पे, उस पे आप अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। इससे आप अपना आधार नंबर से अपना EKYC कर अपना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ के जो अगर आपको ये चेक करना है कि आप पात्र है कि नहीं, आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या CSC केंद्र में जाके अपनी ये जानकारी देके आप जो है कार्ड की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
2: जी हमारे जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं पब्लिक स्पीक और चर्चा कर रहे हैं हम आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी हमारे साथ। तो आप भी हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अब पूछ रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश। कहिए योगेश जी, क्या है आपका प्रश्न?
4: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार।
4: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी स्वास्थ्य

0: के लिए योजनाएं चलाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम केयर स्कीम चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हम कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले और किस तरह से ले और पता कैसे चलेगा। क्यों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौड़ में हम इन दोनों ही स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्कीमें होती है जहां पर क्लैश कर रही है सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो ऐसी स्थिति में हमें साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए?
1: योगेश जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है क्योंकि पीएमजे के अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 56 अलग स्कीम चलती है जो राज्य सरकारों के भी है। लेकिन इसमें एक मुख्य विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप पीएमजे के जो लाभार्थी हैं और उस योजना के अंदर पात्र हैं, तो आपके जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार है, इनकी सूची पहले से तय की गई है और ये ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही डाला हुआ है। जहाँ तक राज्यों के स्कीम का सवाल है, और जो लोग इन योजनाओं में कवर नहीं होते हैं, मान लीजिए हिमाचल में मान लीजिए एक कुछ परिवार जो है पीएमजे के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप उस परिवारों में नहीं आए हैं तो अन्य परिवार जो हैं जो राज्यों के स्कीम में ये कवर होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिम केयर है। एंड ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कि पीएमजे स्कीम जो है ये बिल्कुल निशुल्क है। मतलब आप इस स्कीम के और ये गरीब परिवारों के लिए है। आपको याद होगा 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था जिसमें परिवारों की जो गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार है उनका भी चिन्हांकन किया गया था। तो इन ऐसे परिवारों को चुना गया है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं और गरीबी के जो 40% सबसे नीचे परिवार जो हैं उनको इसमें स्कीम में लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ राज्य जैसे हिमाचल है, कई राज्य है जिन्होंने बाकी लोगों को कवर करने के लिए भी कुछ स्कीम लिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या पीएमजे के अंतर्गत कवर्ड हैं, आपका परिवार उसमें है। उसके लिए बहुत

0: में ये है, कुछ राज्यों में निःशुल्क है। तो आपके राज्य में जो स्कीम लागू है उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आप पीएमजे के अंतर्गत कवर्ड है कि नहीं। और जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चेक, 1-1455 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप ये पहले चेक कर सकते हैं।
1: जी, हिमाचल प्रदेश के बाद अब ये कॉल हमारे श्रोता कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से, राशिद अहमद खान, कहिए क्या है आपका सवाल।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
2: सबसे पहले दो महान विभूतियों को, लता मंगेशकर जी को और भगत सिंह साहब को, मैं अब पूरे देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर।
1: जी,
2: छोटे छोटे दो निवेदन सर। एक तो ये कि एक आयुष्मान कार्ड से एक फैमिली में कितने सदस्य कवर होते हैं। दूसरा ये कि अगर बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है तो कितने आधार, मतलब आर्थिक आधार तक पे उसके आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल सकती है।
1: जी, दो सवाल आपने किए कि कितने सदस्य, और दूसरा आपने उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके विषय में पूछा है। जी
0: राशिद खान जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि एक कार्ड पे परिवार के कितने सदस्य कवर होते हैं, मैं आपको इसमें आपको बता दूं कि जो पात्रता है इस योजना के अंतर्गत एक पूरे परिवार की है। तो अगर आपका परिवार पात्र परिवार में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या उससे अधिक हो, ये सारे जो हैं किसी भी उम्र के हों, ये सभी इसमें कवर होते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ये मैं पहले बता दूं कि जो योजना के अंतर्गत जो शामिल करने की जो मापदंड है, जैसे मैंने कहा कि ऐसी सीसी सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत अलग अलग पैमाने लगाए गए थे कि जैसे गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, अलग अलग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो समग्र आईडी है, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ समग्र आईडी का प्रचलन है, तो समग्र आईडी को के माध्यम से आप जो हमारा आयुष्मान ऐप है या व्हाट्सएप चैटबॉट है या फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में इस समग्र आईडी को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इन शामिल परिवारों में जो पीएमजे के अंतर्गत भी हैं और उसके अतिरिक्त जो राज्य की स्कीम के अंतर्गत है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये राज्य तय करते हैं। उसमें जैसे पहले जितने भी पीएमजे के अंतर्गत परिवार, लगभग 12 करोड़ परिवार पूरे देश में शामिल थे, उसके अतिरिक्त उसको बढ़ाते हुए लगभग 37 लाख परिवार अपने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के परिवारों को जुड़ा गया। उसके बाद फिर 70 वर्ष के ऊपर के प्रति उम्र के प्रति नागरिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से जैसे पीएमजे का जो मापदंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसके और उसके अंतर्गत अगर राज्यों ने अपना अपना स्कीम को एक्सटेंड किया है और परिवारों को शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश में आप समग्र आईडी का उपयोग करके इस आपकी पात्रता को आसानी से चेक कर सकते हैं।
1: तो राशिद खान जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान अवश्य हुआ होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगदीश जोशी जी। जोशी जी, क्या है प्रश्न?
3: सर नमस्कार।
1: नमस्कार
3: और शुभ संध्या आपको भी और जो विशेषज्ञ बैठे हैं इनको भी।
1: जी,
3: तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी एज है 49 और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ टोटली, और घर में हमारे 5 मेंबर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जिसमें देखिए 2 बच्चे एडल्ट हैं, हालांकि वो पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल जॉब वगैरह नहीं करते, और एक छोटा बच्चा है, कुछ 6 में पढ़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये कार्ड बन सकता है? मेरे पास बीपीएल फैमिली से आता हूँ, बीपीएल कार्ड भी है, और दूसरी बात ये है कि हम 5 में से 4 लोग मेंशन है उस कार्ड में, छोटा बच्चा जो उसको हमने 2018 से अप्लाई करा हुआ है, लेकिन वो बीपीएल कार्ड में उसकी एंट्री है नहीं, तो क्या उसको भी उस कार्ड का लाभ मिल पाएगा या नहीं, और कैसे और कहां बनेगा, तो मुझे इस बारे में थोड़ा अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी से अवगत कराएं सर।
0: जगदीश जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने दूसरे श्रोताओं से कहा है, पात्रता ढूंढने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है हमारे कॉल सेंटर पे 14555 में कॉल करके पूछना, जिसे आपको समझ में आए।

0: आएगा, पर वो बता सकेंगे कि आप इस योजना में कवर है कि नहीं। और दिल्ली में जो पात्र परिवार हैं उनके लिस्ट में से चेक करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके बच्चे आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, अगर कोई भी परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में शामिल होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें कवर्ड हैं। इसमें आपको जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड है, उसमें आपके जो भी नए परिवार के सदस्य हैं, जैसे कोई जन्म हुआ किसी का, या किसी के शादी होने से कोई नई बहू आई, इस तरह से नए सदस्यों के जोड़कर ऑटोमेटिकली जो है आप के नए सदस्य जो है इस योजना में जुड़ जाएंगे।
1: जी, एक और हमारे श्रोता दिल्ली से ही धर्मवीर जी हमारे साथ लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, प्रश्न कहिए अपना।
2: मुनीश जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
2: मेरे दो सवाल हैं कि जैसे मदर की सेंटर गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार्ड बना, एक ही कार्ड बना, उसमें 5+5 लिखा आया है, ये क्या हम सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने? दूसरा, क्या अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता? और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम तो कुछ जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए, कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीश जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था।
1: जी जी, जहां तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है, लेकिन हाँ, जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में जरूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
0: धर्मवीर जी, जैसे आपने कहा है कि आपके परिवार में एक सदस्य है जो 70 वर्ष के ऊपर है, महिला है, और उनको कार्ड में दिया गया है जिसमें लिखा है 5+5। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो योजना चल रही है इसमें भारत सरकार के तरफ से जो 5 लाख का कवर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख का कवर और दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी योजना के अंतर्गत आपको 5+5 पूरे 10 लाख का कवर का लाभ मिलेगा। और जहाँ तक दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य जो सीनियर सिटीज़न बाद में होंगे, उन्हें भी इस आयुष्मान व्यय वंदना के अंतर्गत कवरेज मिलेगा, जिसमें आपके अभी जो मौजूदा लाभार्थी हैं वो, और जो भी नए लाभार्थी 70 वर्ष के अतिरिक्त ज़्यादा होंगे तो उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के उसको एक परिवार मान के दोनों को 5+5 लाख का जो है लाभ दिया जाएगा। उनका भी कार्ड जो है, जैसे ही वो 70 वर्ष पूरा करते हैं तो उनका भी कार्ड बनाया जा सकता है।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे भास्कर साहब कि आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो क्या है, उसका दायरा और किस तरह से जो उसकी प्रगति है और आम लोगों तक क्या उसकी पहुंच है, इस विषय में बताइए।
0: इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और फ्यूचरिस्टिक योजना है, जो आने वाले जो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है, इन सब का लाभ किस तरह से हेल्थ सेक्टर में लाया जाए और उससे जो लाभार्थी हैं, जो सिटीज़न हैं, नागरिक है, उनको बेहतर सेवाएं दिया जाए, इसके लिए ये स्कीम बेसिकली बना गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग अलग अस्पताल हैं या कोई लैब हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जो निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से जोड़ना, ताकि जो भी मरीज़ हैं उनके जो आज के दिन में जो हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं, कोई डॉक्टर पर्ची लिखते हैं, या कहीं आप भर्ती होते हैं तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट मिलता है, या कहीं आप टेस्ट कराने जाते हैं तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मिलता है, आज के दिन में हमारे पास एक कागज़ में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस योजना का उद्देश्य ये है कि इन सभी को डिजिटाइज किया जाए, ताकि डिजिटल तरीके से इन सभी कागज़ों को एक साथ रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाए तो इतना बड़ा कागज

0: मरीजों का गट्ठा ले जाने के बजाय ये डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से ये डेटा चला जाए, और जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, ये किसी भी व्यक्ति को बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी अलग अलग समस्याएं हुई हैं स्वास्थ्य के, उन सब की जानकारी हो साथ में, ताकि जब भी आप एक नए केस के लिए, नए इश्यू के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उनको पता हो कि अच्छा दो साल पहले क्या हुआ, उस समय आपने क्या दवाई ली, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ताकि आपको आज बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। सो जैसे UPI के माध्यम से आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन हर जगह कर पा रहे हैं, इसी तरह ये पूरा तंत्र जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देना, और सारे हेल्थ सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से, और लेटेस्ट तकनीक को उपयोग करके ये दूर दराज इलाकों में भी ये सेवाएं को और स्पेशलिस्ट सेवाओं को बेहतर तरीके से देने का एक ये प्रयास है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी, जो आभा नंबर कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 98 करोड़ लाभ आभा नंबर बन चुके हैं, और इसके माध्यम से जहां आप अस्पताल में जाएं तो वहां इस नंबर से पंजीकरण हो, ताकि जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उन सभी जो दस्तावेज हैं डिजिटल रूप में एक जगह पे उपलब्ध हो, ताकि आपको आगे बेहतर सेवाएं मिल सके।
1: जी हाँ, यानी कोशिश कुल मिलाकर ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, कि जो रोगी हैं, मरीज हैं, उन्हें अपनी पर्चियां, पुरानी रिपोर्ट, फाइलों के बंडल लेकर के घूमने की जरूरत न पड़े और उपचार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो। हमारे श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुनाथ जी। जी गुरुनाथ जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका?
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा कुछ दो क्वेश्चन है। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत दायरे में के मतलब कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है हेल्थ के रिलेट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो कितने मतलब प्राइवेट सेक्टर या सरकारी हॉस्पिटल सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और मेरा तीसरा सवाल है, जब कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल इसको कभी कभी देखा गया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते बिल के बारे में जब बोला जाता है, तो इसके बारे में कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है इसके बारे में?
0: गुरुनाथ जी, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत 27 स्पेशलिटीज़ के अंतर्गत लगभग 1961 प्रोसीजर, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हृदय रोग के संबंधित सभी रोग, डायलिसिस, आँख के संबंधित रोग, और इस तरह के कई सारे जो स्पेशलिटी है इसके अंतर्गत, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, और कैटरैक्ट ऑपरेशन है, और जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है, आई मीन 1961 अलग अलग प्रोसीजर हैं। लगभग जो भी बीमारियां होती हैं आम तौर पे, जिसमें आपको सर्जरी करानी पड़े या किसी में आपको भर्ती करना पड़े, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जितना भी उसमें आवश्यकता हो, इस तरह के सभी बीमारियां कवर हैं। जैसे मैं कहूँगा कि लगभग सभी बीमारियाँ जो हैं इसमें कवर्ड हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, पूरे भारत में लगभग 39,000 अस्पताल हैं जहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही आपको ये लाभ मिलेगा। आप अगर गुजरात जाएं या दिल्ली आएं या कहीं भी अगर जाना पड़ा आपको और आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो इस योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखा कर आप उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्राइवेट में 18,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इसमें कवर हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पूरे देश भर में। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अगर कोई अस्पताल आपको मना करे या पैसा मांगे, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का पैसा मांगना या ले देना इसमें ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे मैंने कहा, 1455 14555 पर आप कॉल करके तुरंत एक SOS ग्रीवांस, हम इसको कहते हैं, कि जिसको 5 घंटे के भीतर, एक मतलब बहुत ही जल्द इस तरह के कंप्लेंट को हम लेते हैं, बहुत ही सीरियस, गंभीरता पूर्वक लेते हैं, और इंश्योर करते हैं कि कोई आपसे तुरंत बात करे, आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात करें और किसी और उस अस्पताल को बताएं ताकि आपको समय पर सेवा मिल सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, पूरे देश भर में ये चल रहा है ताकि जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो और उनको समय पर सेवा मिल सके।
1: जी, तो आपके लिए मैं हेल्पलाइन नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 1-4-555-1-4-5-5-5। इस पर यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप सूचित कर सकते हैं और उसमें समाधान अवश्य होगा। और हमारे ये श्रोता भी महाराष्ट्र से हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से, प्रकाश रावत जी। रावत जी कहिए, क्या है प्रश्न आपका?
3: मैं प्रकाश रावत सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दो तीन बार में एडमिट होने के बाद पुनः फिर से एडमिट होने के बाद जो खर्चा आएगा वो तो आयुष्मान में कवर हो जाएगा। दूसरा ये सवाल है कि 18 कोटी को नागरिकों को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड वितरित होना चाहिए, ये मेरी गिनती है।
0: प्रकाश रावत जी, पहले मैं बता दूं, ये जो 5 लाख का प्रति परिवार प्रति साल का जो कवर है, मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल 31 मार्च तक ये 5 लाख का है, तो अगले साल 1 अप्रैल से फिर से 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब प्रति साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप केवल एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं या 2 बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने बार आपको जाने की अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़े उसने बार आप इसका योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, जहां तक हमें पता है, जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है। मैं तो कहूंगा आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने खुद कार्ड बना सकते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस कभी कभी कार्ड जिनकी आवश्यकता है वो बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या फिर आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं और महाराष्ट्र सरकार भी जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है, तो आपके यहाँ पर भी ये कार्ड बन रहे होंगे।
1: अच्छा, ये देखिए वास्का साहब, कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं, यदि वो ऐसी जगह रहते हैं कि वो उन्हें वहाँ लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आयुष्मान के लाभार्थी होने के पात्र हैं?
0: बिल्कुल, जो आयुष्मान व्यय वंदना है जो 70 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को कवर करने का स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर आप CGHS या किसी राज्य सरकार के स्कीम में कवर हैं लेकिन आपको लगता है कि PMJ के अंतर्गत जो लगभग 39,000 अस्पतालों में आपको लाभ लेने से बेहतर आपको लाभ ले से लेना है, तो आप उस योजना को ना चुनकर PMJ व्यय वंदना को चुन सकते हैं। आप इसमें कार्ड बना सकते हैं और कार्ड बनाते समय आपके केवल ये डिक्लेयर करना होगा कि हम CGHS छोड़कर हम इस नई योजना में शामिल होना चाहते हैं।
1: जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक नया विषय लेकर फिर होंगे हाजिर। आज्ञा दीजिए, मैं हूं मुनीश शर्मा। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंक रोधी नीति और
1: भर्ती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक। गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना। कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा, लास्ट थ्रो 88.56। तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में, 3:37.92 के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से, 8:21.67 समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे। तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली चौथे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
3: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक पांच शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट आउट जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट आउट में हुआ लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच पांच शूट आउट तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
1: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का 2रा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
4: Going to the Kurash Arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games while at the 2022 Games her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash Arena.
1: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की सुआंग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए 3रा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज चार धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
4: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग प्री क्वार्टर फाइनल एनकाउंटर। इट वॉज एन एक्सट्रीमली क्लोज कॉन्टेस्ट विद गणेश एजिंग पास साहिल 149-148, विनिंग द ऑल इंडियन बैटल बाय जस्ट 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले चार मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
5: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd minute में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
5: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिला ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
5: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
4: फ्रॉम वुमेन्स सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11 बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
5: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासू ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र अनुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
5: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
4: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में 3-3 भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गुलजार का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर ने इसे गाया था फिल्म गुलामी के लिए। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए सिद्धा साई का ख्याल गायन। राग है जोग कौंस, बोल हैं प्रीतम नहीं आए। इनके साथ तबला संगतकार उदय प्रताप सिंह ठाकुर और हारमोनियम पर संगत अमन की।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे सिद्धा साई का ख्याल गायन, राग था जोग कौंस, बोल थे प्रीतम नहीं आए। इनके साथ तबला संगतकार थे उदय प्रताप सिंह ठाकुर और हारमोनियम संगतकार अमन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम राग रजनी समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाए मिल मधुर गान अपना।
2: गाँव गाँव नगर नगर गली गली डगर डगर सूचना शिक्षा मनोरंजन।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shehzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
6: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the seventh largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
5: The centre will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said a central team will be sent to Karnataka on 3rd October to assess the drought situation. The Agriculture and Farmers Welfare Minister today addressed the National Agricultural Conference Rabi Campaign 2026 in the national capital today. He called upon states to complete preparations for the Rabi season through coordinated planning, scientific assessment and close field level monitoring. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan today with athletes making their mark across shooting, cricket, kurash and boxing. The country added 8 more medals to its tally, while the men's cricket team advanced to the semifinals. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw, with Yashveer Singh clinching silver and Rohit Yadav bagging the bronze medal. Commonwealth Games bronze medalist Yashveer Singh delivered a personal best of 85.72 meters to secure the silver. India's Rohit Yadav completed the podium with an effort of 84.35 meters. Sri Shankar Murli clinched the silver medal in the men's long jump, recording a best effort of 8.07 meters, defending his silver at the previous games. Athlete Gulbir Singh won his second silver medal at the ongoing games, finishing runner-up in the men's 1,500-meter event. In shooting, Isha Singh won the silver medal in the women's 25-meter pistol individual event. Paril Chaudhary won her second bronze medal at the games, clocking 15 minutes 14.61 seconds in the women's 5,000-meter event. Athlete Vidya Ramraj bagged bronze in the women's 400-meter hurdles, setting a new national record in the process. India also secured a bronze medal in Courage, with Pinky Balhara finishing third in the women's under 78 kilogram category. In women's boxing, Olympic medalist Lovlina Borgohain and Priya Ghangas have assured India of 2 more medals. India currently 12th in the Asian Games.